अग्ने अतिर्वर्मनसा गृणानो अस्माकं भोज्य विधातनो नाम कृतनाजगुं सहमानमुग्नमग्निगुं भवेम परमास्तदस्तात् सरः पुरुषदति दुर्गा निविस्वाक्षामद्देवो अधिदुरिताच्चग्निः रत्नो च कमेज्यो अध्वरेषु सनात्यहो दानज्ञसहृत्ये स्वाञ्जा अग्ने तनवं विप्रयस्वास्मभ्यं च स्वभगमायजस्व को विर्जिष्टमयि जोनिक्रन्तवे इन्द्रविष्णो न सञ्चरेम नाकश्च पुष्टमपि